सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में

0: अधूरी सांस थी,
1: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम,
0: मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
2: Wake up to Kajal every weekday morning on Breakfast. Oh, I get radio.

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: Backed for the trip? Gifts? Passport?
2: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
1: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
2: Simzy?
1: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
3: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
4: T's and C's apply.
5: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
6: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
7: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
8: खुद से भी ज्यादा।
6: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
8: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
6: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।

0: लिखे एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Soulful Memories with Ritu Sharma every weekday morning at 11 a.m.

0: your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales@leicamedia.co.uk.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
4: अभी ना यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है. क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ.
5: अगर हम साथ हैं
4: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
6: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर.
7: ये रिश्ता क्या कहलाता है. मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस. अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड टीवी. प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स.
0: साउंडिंग गुड थ्रू आउट द नाइट विद द बिगेस्ट सूथर्स. इट्स योर

0: Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: ये है लाइका गोल्ड

ओ मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन का विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, दूसरा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेश, एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस, लख लख

ना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान।

0: Basmati Rice. Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash and Carry, Syston Street, Leicester, and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
3: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक.
4: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा.
3: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
4: आर्य वर्धन अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है.
5: मैं ही राजीव भाटिया.
3: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 जी टीवी एच डी पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
6: मंत्रा हॉलीडेज विशेस यू एंड योर फैमिली अ हॉलीडे सीजन फिल्ड विद जॉय, लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स. एज यू सेलिब्रेट स्टार्ट प्लानिंग योर नेक्स्ट एडवेंचर विद अस. विजिट www.mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड.
7: मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
8: आतिफ असलम लाइव इन द यूके.
9: सोचता हूँ कि वो कितने मासूम.
10: To the O2 London on Sunday, the 14th of June.
8: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
11: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Breakfast with Kajal.
12: Leica Radio.
13: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS Swami Narayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

शुक्रवार वर्ष 2026 के मई महीने की 15 तारीख और भाई वक्त हो चला है 10:05 ब्रिटिश घड़ियों में। कितना इंतजार करवाता है ये फ्राइडे, कितनी देर बाद आता है ये फ्राइडे और कितनी जल्दी छुमंतर हो जाता है फ्राइडे सैटरडे संडे, जल्दी आता है मंडे। ऐसा लगता है सब वक्त अपनी रफ्तार से चलता है। इससे कितना अच्छा हो कि सप्ताह में 3-4 सैटरडे संडे आए ऐसा हो नहीं सकता। लीजिए साहब डायरी खोलें और शायरी से करें शुरुआत आज की मनोरंजन कार्यक्रम की। याद दिलाते हुए माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। गीत संगीत सूचनाएं समाचार चिंतन विचार और भाई काव्य कला की ये छोटी छोटी क्या कहें फूल पत्तियां। लोग कहते हैं जमाना बदल रहा है, वक्त कैसा आ रहा है। मुझसे किसी ने पूछा आपके शहर का नाम क्या है। आप जानते हैं भाई जहां मेरा जन्म हुआ जहां से मैं आता हूं अपने शहर का नाम क्या बताता हूं, रोहतक। भाई है तो रोहतक लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, हम जिस्म के रास्ते से रूह तक पहुंचने का प्रयास करते हैं इसलिए अपने शहर को हम रोहतक कहते हैं।

0: back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Back to back hits across the Leica Radio network.
1: Rooh tak rasta banaya ja raha hai. रूह तक रास्ता बनाया जा रहा है, जिस्म को जरिया बनाया जा रहा है। जख्म पर नहीं, आंख पर बांधी है पट्टी, चोट को अंधा बनाया जा रहा है। नस्ल को एक भीड़ का हिस्सा बनाकर असल में तन्हा बनाया जा रहा है। और पाप की करते कमाई, पाप की करते कमाई, उसका नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर धर्म को धंधा बनाया जा रहा है। शायरी जिंदगी का मैल है बस, और मैल से पैसा बनाया जा रहा है, धर्म को धंधा बनाया।

0: क्या खा के आए हैं आज? आप आते ही कोसने लगे हैं, हैं? भाई ये क्या मतलब दुनिया खराब है? अरे साहब ये तो कहानी आपकी अपनी है, क्योंकि दुनिया आपसे ही बनी है शर्मा जी। अगर आप खराब हैं तो दुनिया खराब है, आप अच्छे हो जाइए तो दुनिया अच्छी हो जाएगी। हाँ पर वार्निंग अच्छी है, संभल के रहना जी। हाँ भाई सोच समझ के पांव बढ़ाना, दुनिया बड़ी खराब है, आगे बढ़ना। राइट शुरुआत हो गई भाई, दो गीत हमने प्रोग्राम में बैक टू बैक आपको सुनवा दिए। पहला गीत था वो किशोर कुमार की आवाज में, आंसू और मुस्कान फिल्म से लिया था, जय गोविंदम जय गोपालम, कॉमेडी। और भाई दूसरा गीत ये भी कुछ कुछ कॉमेडी था, एंड दैट वाज दो फ्रॉम दो जासूस फिल्म। भाई दो जासूसों की बात आपने सुनी, और तीसरा जासूस कहता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। हाँ पता नहीं भाई, हमें तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, हाँ थोड़े बहुत रुकावटें आई। वो क्या होता है कि जब आपको दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है तो शायद कहीं आप भी अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और इसमें कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है कि ये अच्छा क्यों बन रहा है, इतना अच्छा क्यों। मुझे भी कभी कभी लगता है ये मैडम इतनी अच्छी क्यों है, रोज सुबह सुबह चाय दी जाती हैं। एक जमाना था भाई, हम जब मैं बीबीसी में काम करता था तो वहाँ पर चाय का कप सब्सिडाइज थी चाय, वहाँ बुश हाउस में 6 पेंस की चाय मिलती थी, 6 पेंस की। हाँ और भाई एक कप चाय, और उस पर हम झगड़ा किया करते थे, आज मैं पिलाऊंगा। चाय अच्छी थी ऐसी बात नहीं है, लेकिन 6 पेंस की सब्सिडाइज। कहीं कहीं जो है खाना पीना इतना बढ़िया और इतना सस्ता होता है कि जी चाहता है भाई दावत करते ही रहे। लेकिन यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ जो कैंटीन थी उसमें थोड़ा सा महंगा था, कैफे था, और वहाँ पे दिल नहीं करता था, मैं बचता था ग्रुप में बैठने से, क्योंकि कभी ना कभी वो आके लड़कियाँ चेप जाती थी, आज रवि पिलाएगा कॉफ़ी, आज रवि पिलाएगा। एक बार तो जबरदस्ती हो गई अपने साथ भाई, और हमने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी सबके लिए, और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह भी, और साहब पीते रहे। अब पॉकेट में मनी तो था नहीं, उन दिनों थोड़ा कड़के होते थे ये जो नौजवान लड़के होते थे भाई। फिर एक खूबसूरत लड़की जो मिस यूनिवर्सिटी रह चुकी थी और अच्छे खासे घर की पैसे वाली थी, उसके पर्स से बड़ी सफाई से हमने 10 रुपए का नोट निकाला। हाँ और हमने कहा बिल आएगा तब दे देंगे, तो भाई वो सब चाय पी रहे, हंस रहे, आज तो कमाल हो गया भाई, रवि जैसे कंजूस ने सबको कॉफ़ी पिला दी। और मैंने कहा पियो पियो, अपना क्या है, ये कॉफी भी आपकी, धन भी आपका, पुण्य भी आपका, अपनी तो बस हवा हवा है। और मैं किताब से हवा करने लगा उनको, तो ये क्या कर रहे हो, ये बताने के लिए कि ये कॉफी भी आपकी, ये स्नैक्स भी आपकी, अपनी तो बस हवा हवा है, खाली हवा है। और उसके बाद कॉफी पी के चले जब बाद में कहती है मेरे 10 रुपए गायब हो गए। मैंने कहा चोर समझा क्या, एक तो कॉफी पिलाओ ऊपर से इल्जाम लगवाओ। भाई सब उसकी लड़की के मुंह की तरफ देख रहे थे कि एक शरीफ आदमी ने आज कॉफी पिला दी तो उस पर चोरी का इल्जाम। भाई ऐसी ऐसी शरारतें वो कॉलेज के दिन, वो यूनिवर्सिटी के दिन, वो याद आते हैं। बाद में उस लड़की को बताया, अरे बताया क्या साहब, उसके साथ एक स्टेज पर प्ले किया, बहुत बड़ा अवार्ड उसे भी मिला, मुझे भी मिला, और उसके बाद तो भाई वो हीरोइन पक्की हो गई थी यूनिवर्सिटी में। अरे साहब हम क्लास में कम और ऑडिटोरियम की स्टेज पर, ऑडिटोरियम के मंच पर ज्यादा होते थे, एंजॉय करते थे एक एक पल, एक एक दिन, एक एक क्या कहते हैं भाई वो सब्जेक्ट क्लास में पढ़ाया जाने वाला, लेकिन मंच पर स्टेज पर जो रिहर्सल्स करते थे और भाई जो परफॉर्म करते थे, दैट वॉज ग्रेट। आइए अब वो पुरानी बातों के भाई उस इतिहास से निकल कर जरा देखें कि पाउंड का रेट क्या चल रहा है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK आज एक पाउंड के बदले दे रहे हैं 127.75 रुपीज, 127.75 रुपए। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
4: Location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: यस बहनो भाई, और लाइका रेडियो नेटवर्क की लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोग अब ज्यादा सुन रहे हैं, और भाई सफलता की सीढ़ियां एक एक करके ये आपका रेडियो चढ़ता जा रहा है बुलंदियों को छूने के लिए। लेकिन भाई एक चीज और, आप खबरों का समय हो गया है वैसे, पर उधर जाते हुए पता चला है कि भाई मेनिनजाइटिस के केसेस होम काउंटीज में पाए गए हैं। रेडिंग में खासकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, दो जो है वो बीमार बताए जा रहे हैं, प्रभावित बताए जा रहे हैं। एक स्टूडेंट था वो जिसकी डेथ हुई है, और दो का इलाज चल रहा है, इलाके में एंटीबायोटिक्स बांटे जा रहे हैं, सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। तो भाई ये तो खबर है, और दूसरी खबर जो मेन छाई हुई है यूके में, वो तो प्रधानमंत्री के पद को लेकर है। स्टार्मर इज अनपॉपुलर, उसके मिनिस्टर्स भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता में भाई कमी आई है और उन पर दबाव है इस्तीफा देने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे समय में इस्तीफा ठीक नहीं है, देश को हम ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमी को लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कुछ उनके समर्थक भी हैं, पर भाई यहां प्रधानमंत्री के पद को लेकर के निरंतर उठा पटक चल रही है। और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, लेट्स फाइंड आउट थ्रू द न्यूज। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के समाचार सुनिए। ट्रंप के चीन दौरे का दूसरा दिन है, बल्कि उनका दौरा समापन यानी समाप्त हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि मैं चीन से बहुत मुतासिर हुआ हूं, प्रभावित हुआ हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और चीन की सोच काफी मिलती जुलती है। अपने दौरे के दूसरे दिन या अंतिम दिन बीजिंग में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने प्रेस से बातचीत में ये बात कही। चीन के सरकारी कैंपस झोंगनान हाई में दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि बातचीत में व्यापार, ईरान और कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई डील हुई हो ऐसा नहीं भाई स्पष्ट किया गया है। उन्होंने ये जरूर कहा कि हमने कई ऐसी समस्याएं सुलझाई जिन्हें दूसरे लोग शायद हल नहीं कर पाते। भारत से आने वाली खबरों में, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि गैस पेपर के नाम पर असली सवाल लीक हुए थे। भाई ये परीक्षाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो नीट परीक्षाएं होती हैं, और इनसे ही आगे चल करके देश को चलाने वाले ऑफिसर्स या भाई वो सिविलियंस अधिकारी जो है वो चुने जाते हैं। लेकिन 2026 के नीट यूजी पेपर के लीक होने के बाद परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया है, और वो कहते हैं कि वो जो पेपर जो दिए जाते हैं शुरू में, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया है कि अनुमानित यानी अंदाजे से कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे, पेपर बांटे जाते हैं या बेचे जाते हैं, लेकिन उनमें असली परीक्षा पेपर जो है वो लीक हुए, और इसकी पुष्टि होने के बाद परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। अब उन्होंने बताया है कि अगला इम्तिहान 21 जून को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि इलेक्शन खत्म तो मोदी की वसूली शुरू हो गई है। यानी इलेक्शन के दौरान सब चीजें ठीक ठाक भाव पर मिल रही थी, सस्ती थी, लेकिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले की सख्त आलोचना की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया, पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया है, वहीं सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। साथ में सोना ना खरीदने के लिए अपील की गई है, और सोने के इंपोर्ट पर भी जो है कहीं पाबंदी लगाई गई है, तो कुछ कुछ वो ड्यूटी बढ़ा दी गई है। शी जिनपिंग के ढलते अमेरिका वाले बयान पर ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई है। शी जिनपिंग ने कहा अमेरिका अब ढलान पर जा रही, उसकी इकोनॉमी ढलान पर है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस समय चीन के दौरे पर हैं, आज समाप्त कर रहे हैं दौरे को। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के एक बयान को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट किया है। दरअसल शी जिनपिंग कहते आए हैं कि पश्चिमी देश ढलान पर हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। हालांकि चीनी मीडिया इसे अमेरिका के संदर्भ में बताता रहा है, पश्चिमी देश नहीं अमेरिका। आज ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट किया। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जब अमेरिका को डिक्लाइनिंग नेशन यानी ढलता हुआ मुल्क बताया था, तब उनका इशारा मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडन के दौर की तरफ था। टालते रहो, एक दूसरे पर लाते रहो। भारत सरकार ने सोने के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने के बाद अब ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट के नियम भी सख्त कर दिए। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत इंपोर्ट और निगरानी से जुड़े कई नियम बदल दिए गए हैं। और एक बार फिर बता दें कि भाई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पद को लेकर के खींचातानी का दौर अभी भी चल रहा है और उनके अपने मिनिस्टर्स ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि स्टार्मर की लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हुई है। ही इज अनपॉपुलर, मिनिस्टर्स एडमिट्स। दैट्स द न्यूज। भाई ये थे आज के समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: 10:35 Like a radio network पर आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम रवि शर्मा के साथ। खबरें आप सुन चुके हैं, आइए अब लौट आइए संगीत की दुनिया में।

0: बरसों पहले भाई ये गीत रेडियो पर बहुत बजता था और मेरी माँ सुन के इसे कहती थी, ये क्या हो गया इस औरत को, क्या कह रही है ये, न्यारी होंगी न्यारी होंगी। आजकल की लड़कियां पता नहीं क्या हो गया, उनको शादी के कुछ ही महीने बाद बस अपना अलग चूल्हा चौका बसाने की बात करने लगती है, न्यारी होंगी। फिर मैंने समझाया कि न्यारी होगी नहीं, यारी हो गई, यार से कह रही है वो। भाई रेडियो पर सुने जाते थे गाने किसी दूसरे घर में किसी के यहाँ, और वो उड़ते उड़ते शब्द पहुँचते थे तो कुछ का कुछ समझते थे। लेकिन साहब इस गीत को सुन करके और मेरी माँ की वो बात याद करके कि न्यारी होंगी, ये टॉपिक आज के दिन पर बड़ा चिंतन का विषय बनेगा, क्योंकि आज है विश्व परिवार दिवस, वर्ल्ड फैमिली डे। और भाई भारत की तहजीब तो पूरे विश्व को एक परिवार मानती है। आज चिंतन में आप सुनेंगे परिवार का महत्व, और हमारे डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा जी का आलेख शामिल रहेगा चिंतन में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, 11 बजे की खबरों के बाद होगा चिंतन।
1: ये है लाइका रेडियो। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और पैसे भिजवाना चाहे तो रेट नोट कर लीजिए भाई, आज एक पाउंड के बदले LemFi वाले दे रहे हैं 128.11 भारतीय रुपए, पाकिस्तानी 372.54, श्रीलंकन रुपए 434.39, बांग्लादेशी टकाज 163.76 एंड अफगान अफगानी 82.84।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly. Great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: Let's talk about the cricket, भाई. Tata IPL 2026 जोरों पर हैं और जो कल मुकाबला हुआ इस टूर्नामेंट का, that was between पंजाब एंड मुंबई, पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस. भाई इस मैच में मुंबई की जीत हुई. ये धर्मशाला के मैदान में खेला गया और 6 विकेट से मुंबई इंडियंस ने ये मैच अपने नाम कर लिया. और अब आज के मैच की बात करें तो साहब, आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर होगी और ये टक्कर लखनऊ में होगी. लखनऊ में खेला जाएगा ये मैच. दोपहर 3 बजे मैच शुरू होगा. स्कोर के आंकड़े हम आपको बताते रहेंगे. बस जुड़े रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क के साथ.
0: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे. रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड regulated by the FCA. Leica Radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी. मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99.
2: हमजा समोसास 3 for 10.
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p.
2: सुहाना मसालास 2 for 150. रामदेव नमकीन 2 for 149.
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179. हाइंस केचप 279.
2: केसर मैंगो पल 149. फूल मखाना 2 for 5. फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE5 4UN.
2: While stocks last.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मां आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक.
8: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रे जो हसबंड जी
7: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज. 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मां बे शानदार शोज बपोरे 2:30 वागे अने सांजे 7 वागे. टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk. Second radio, husband ji.
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
10: Relax, I've booked the Uber already.
9: How? My roaming isn't even working yet.
10: I switched to Simzy before we left London.
9: Simzy? Since when are you the tech expert?
10: Since I decided I want a stress-free holiday.
11: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
12: T's and C's apply.
13: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स.
14: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
13: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स.
15: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of 4 amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for 2 to Barcelona, a Michelin star dinner for 2 people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
16: Punjab the biggest tunes.

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ।
1: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजें। सत्या फिल्म का ये गीत हमें ले जाएगा 11 बजे की खबरों तक, और भूलिएगा नहीं, खबरों के उस पार होगा आज का विचार, यानी

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। पंद्रह मई शुक्रवार और भाई ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुआ है समय। वक्त हो गया है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और बहन भाइयों, आज का विचार आज के दिन के साथ जुड़ा हुआ है। आलेख हमें भिजवाया है डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा जी ने वुल्वरहैम्पटन से। याद दिला रहे हैं कि आज 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, विश्व परिवार दिवस, फैमिली डे। भाई ये दिन 1993 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित किया गया, तय किया गया था, और 1994 से हर साल 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल फैमिली डे। भाई फैमिली वो इकाई है, वो यूनिट है जो पूरे संसार का आधार है। दुनिया चलती है परिवार से, परिवार ना हो तो ये संसार ना हो, बता दें आपको। बस जब दो आत्माएं मिलती हैं, जब वर और कन्या का संयोग बनता है, शादी के बंधन में बंधते हैं, तो फिर वो एक कमिटमेंट करते हैं कि वो वंश को आगे चलाएंगे, परिवार बनाएंगे और परिवार से इस संसार को समृद्ध करेंगे। भाई ये दिन जिसका उद्देश्य परिवार के महत्व, यानी फैमिली इंपोर्टेंस, यूनिटी, प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यस, टू गेट मैरिड एंड टू मेक फैमिली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज योर कमिटमेंट। मैरिज इज नॉट ए फन। अब साहब, परिवार से बनता है संसार और आज विश्व परिवार दिवस है। अब भारत की तहजीब में तो पूरा विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, सबसे प्रेम करो, मिलजुल के रहो और तरक्की करो, भारत का संदेश रहा है बरसों से। फिर ऐसे में ये लड़ाई झगड़े, बैर विरोध, ये हथियारों की होड़ और ये छोटी छोटी बातों पर जोड़ तोड़ देशों के बीच, भाई आवश्यकता प्रेम और सहयोग की, त्याग और सम्मान की। जहां परिवार में प्रेम होता है ना, वहां जिंदगी में शक्ति और शांति दोनों बने रहते हैं। एक बार किसी ने महात्मा गांधी से पूछा कि समाज को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। गांधी जी ने कहा कि अपने परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। मजबूत परिवार ही मजबूत समाज, मजबूत राष्ट्र और मजबूत संसार बनाते हैं। परिवार में संस्कारों की महत्ता, मिलजुल कर रहने, एक दूसरे पर भरोसा करने, इन सब चीजों से बनता है परिवार। भाई कभी कभी एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझसे कोई पूछता है कि भाई तुम इंडियंस में परिवार जुड़े रहते हैं, काफी बड़े स्तर पर देखा है कि लोग जो है वो कोई 50वीं वेडिंग एनिवर्सरी, 60वीं वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। हम हैरान होते हैं इतने सालों से इकट्ठे, कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कहा सुनी होती है साहब, पर एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट इज द मैरिज, एडजस्टमेंट इज द की फॉर द सक्सेस ऑफ द मैरिज। घर केवल ईंटों से नहीं, प्रेम से बनता है संसार। माँ की ममता, पिता का साहस, यही है जीवन का आधार। दादा दादी की मीठी बातें, संस्कारों की अमृत धार, भाई बहन का स्नेह निराला, हर दुख करता है बेकार। जब मिलजुल कर साथ रहे हम, हर मुश्किल हो जाती पार, परिवार वही दीपक होता जो करता जीवन उजियार। छोटी छोटी बातों पर अलग होना, अलग होने की धमकी देना, सेपरेशन डिवोर्स, भाई ये शब्द आपको बता दें कि भारतीय शास्त्रों में तो कहीं है नहीं, संस्कृति में तो है नहीं, बट इफ यू कम अक्रॉस टू सम केसेस दैट मे बी द इफेक्ट ऑफ द यू नो अदर कल्चर्स। वरना हम विवाह को ईश्वर की आज्ञा मानते हैं, और भाई जो अपने परिवार में एडजस्ट कर सकता है वो सारे संसार में एडजस्ट कर सकता है। कहीं भी जाइए दुनिया में, एडजस्ट होके दिखाइए, क्योंकि पूरा संसार एक परिवार है। और परिवार टूटने के कारण क्या होते हैं,
पति पत्नी में थोड़ी सी कहासुनी हुई और बात अदालत तक पहुंच गई। अब कोर्ट में जज साहब कहते हैं कि देखो तुम्हारे दो बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं, अगर तुम अलग हो जाओगे तो बच्चे किसके पास रहेंगे, ये सवाल उठेगा। फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो टूटेंगी बिखरेंगी, धन खर्च होगा, एक बार विचार कर लो, सोच लो। और उन्हीं दिनों में भाई बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें पेरेंट्स इवनिंग थी, कार्यक्रम आयोजित किया गया था, दोनों पति पत्नी पहुंचे, साथ साथ नहीं बैठे, खुद सीट छोड़ करके पति इधर पत्नी उधर, लेकिन स्टेज पर बच्चे इकट्ठे आए और बच्चों ने जो शब्द सुनाए उन शब्दों ने, उस एक गीत ने मम्मी डैडी को हिला दिया, यानी टूटे हुए बिखरे हुए परिवार को फिर मिला दिया। जब परिवार टूटता है ना, जब परिवार बंटता है ना, और जब बच्चों का या तो पिता से या माता से अलगाव होता है, उनकी क्या गलती है भाई, जवाब दीजिए।

0: एक बटा दो, दो बटे चार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, पर नहीं बटा है और नहीं बटेगा मम्मी डैडी का प्यार। दोनों का प्यार चाहिए, संतान को, औलाद को, बच्चों को। तो छोटी छोटी बातों पर मत बटिए, मत टूटिए, परिवार को जोड़े रखिए। आज है विश्व फैमिली डे, वर्ल्ड फैमिली डे यानी विश्व परिवार दिवस, और इस अवसर पर डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा जी का आलेख हमने प्रोग्राम में शामिल किया। आओ आज प्रण ये ले हम, न टूटे रिश्तों का व्यवहार, विश्व परिवार दिवस सिखाता, वर्ल्ड फैमिली डे सिखाता, परिवार से है सुंदर संसार। थैंक यू डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा जी, वुल्वरहैम्पटन से आपका चिंतन, आपका आलेख आज के चिंतन की शोभा बना। और बहन भाइयों, परिवार को जोड़े रखिए, पूरे संसार को जोड़े रखिए, यही है संदेश आज के दिन का। और इसीलिए भारत की संस्कृति सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है तो देशों को भी अपनी सरहदों पर शांति बनाए रखनी चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, संस्कृतियों का आदान प्रदान होना चाहिए। विश्व परिवार दिवस, वसुधैव कुटुंबकम। भाई ये कुछ लोग इसको वासुदेव कुटुंबकम कहने लगते हैं, वसुधैव कुटुंबकम यानी संस्कृत का शब्द है वसुधा, यानी धरती, पूरी धरती को वसुधा कहते हैं, वसुधैव ना, ये पूरी धरती ही एक परिवार है, पूरा विश्व एक फैमिली है। यह है संदेश आज के दिन का और भारतीय संस्कृति का। थैंक यू डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा। आज का चिंतन, आज का विचार बहनों भाइयों और समेटते हुए याद दिला दें कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। और भाई अगला चिंतन आप अब आने वाले सोमवार को सुनेंगे, आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन, चिंतन।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And send money to India with competitive rate by State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं, रेट अच्छा है अभी भी। अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो एक पाउंड के बदले SBI UK दे रहे हैं 127.75 रुपीस। You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99,
3: हमजा समोसास 3 for 10,
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
3: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
4: हीराग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
3: केसर मैंगो पल 149, फूल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
3: While stocks last.
2: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
5: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
2: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
5: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
2: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Citybond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
12: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
11: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
12: Also explore 2026 cruises.
11: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
4: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203 773 633 now. Apta bonded.
11: Mantra Holidays.
13: What's your travel mantra?
11: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
14: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
15: हो हो, अपनी माँ को बोलो, मैं लेकर आऊँगा।
16: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
14: अरे कहाँ हो तुम?
15: हो हो, आलो आलो।
16: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
2: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsa Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
17: On this week's Leica Extra podcast, we bring you a special on India Week, hosted by Anuj Radia.
18: Saw Calpol, children's medicine, and there was a little Indian girl on the box. Now, for me, that's a big change in how we're identifying and seeing ourselves. When my parents were shopping in Boots at that time for me, they would never have seen a little Indian girl on a box.
17: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
19: Leica Radio.
17: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
11: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason, by travellers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: क्रांति। और भाई आप शायद जानना चाहें कई लोग कि भाई क्रांति का शांति का मतलब तो आपको मालूम है शांति, लेकिन क्रांति होती है इनकलाब, बदलाव जिसको कहते हैं ना भाई। एक पूरी ताकत से आप किसी चीज को बदलने की कोशिश करें तो वो क्रांति कहलाती है। और क्रांति फिल्म, मनोज कुमार साहब की फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कई लोगों को पसंद आया भाई, एजाज भाई चैशम में सुन रहे हैं और वो हर गीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, थैंक यू एजाज। और नैना शाह, आपका संदेश भी रेगुलरली मिलता है, कहती प्लीज शेयर ऑन रेडियो यस्टरडेज एजाज भाईज, क्या था प्रिय रवि जी, प्लीज शेयर ऑन रेडियो यस्टरडे एजाज भाई सॉन्ग, खो गया है मेरा प्यार, गोविंदा के फादर अरुण आहूजा हैं और मेरी इन्फॉर्मेशन कॉपीड नहीं है। अच्छा सही है भाई, देखो मेरे लिए आप दोनों बहुत प्यारे लिसनर हैं मेरे, लेकिन जो बात सही, अगर आप कहती हैं कि वो गोविंदा के फादर ही हैं जो फिल्म कौन सी थी, हरियाली और रास्ता, खो गया है मेरा प्यार, उसका गीत जो है हमने कल सुनवाया था, कल दर्द भरे गीतों का दिन था, गीत बहुत बढ़िया था, प्रस्तुति अच्छी थी, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़, क्योंकि वो आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं, सारी चीज़ें अच्छी थी और आप दोनों भी बहुत अच्छे लिसनर हैं, इसलिए भाई अब वो उन्होंने कहा था शायद वो आहूजा साहब नहीं हैं, कोई और हैं, तो पता करना भाई, आप बताना, और हमारे श्रोता बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे, वो अपने आप को करेक्ट करने में अपना क्या कहेंगे भाई, फकरी समझेंगे। तो नैना थैंक यू वेरी मच, बताते रहा करें, उन्होंने बीएम व्यास कहा है तो कहते हैं कि बीएम व्यास ने फिल्म आवारा बरसात में नरगिस के फादर के रोल में इस तरह की भूमिका निभाई थी, लेकिन ये डेफिनेटली गोविंदा के पिता अरुण आहूजा जी ही थे। अरे भाई कोई भी हो, हमें कौन से उन्होंने अपनी फीस के पैसे देने हैं, तो जो मिला होगा वो अकेले डकार गए हैं लेकिन थैंक यू वेरी मच एजाज के लिए भी और नैना के लिए भी। और हंसा वोरा जी आपको आज कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैव ए ब्लेस्ड डे, और आपको चिंतन बहुत पसंद आया है, साथ में आपने कुछ और भी लिखा है कि वंडरफुल शो एंड एक्सीलेंट चॉइस ऑफ सॉन्ग्स। मैं क्या करूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं क्या करूं, आई टेल यू, मैं हंसा जी आई एम माई नंबर वन फैन क्षमा कीजिएगा भाई, ये आपका बड़प्पन आपका प्यार है। और हरीश रोडा थैंक यू भाई, सुनीता शर्मा हैप्पी वर्ल्ड फैमिली डे टू एवरीवन, उल्लास टोरंटो में है, थैंक यू वेरी मच। और ये कौन है भाई, जेजे, थैंक यू वेरी मच जेजे साहब, आप भी परिवार पर अपनी टिप्पणी भेज रहे हैं, आज के चिंतन को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, और नारी का इस भाई परिवार को सफल बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। कौन कह रही हैं, एक नारी कह रही है, वत्सला जी थैंक यू वेरी मच, सहर रजनी और रंजन जी थैंक यू वेरी मच, अर्जन कीर्ति, कीर्ति हमेशा बढ़िया संदेश देती है, जय श्री कृष्णा गुरु जी, सो नाइस ऑफ यू, निर्मला जी, राजीव पटेल, नीला चौधरी, महेंद्र बजारिया, पम्मी सिंह स्लाव में भाई गीतों के साथ साथ हमारी खबरों की भी प्रशंसा लिखते हैं, जैस्मीन, जैस्मीन आपका संदेश मिलता रहता है, सो नाइस ऑफ यू, आप तो बाबा जी के दर्शन भी करा देती हैं। और भरत गंगाराम थैंक यू भाई, सो नाइस ऑफ यू, प्रकाश सूतर जी, और ये वनीता, ये इतनी हैंडसम तस्वीर किसकी है, जो फोटो आपने भेजी सचमुच बहुत ही हैंडसम मैन है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रवि शर्मा हो थैंक यू वेरी मच भाई, आपने धन्यवाद भेजा है उस संदेश के लिए जो हैप्पी बर्थडे का पैगाम आपने रिकॉर्ड कर लिया था। और कौन है, रोजी है, हाँ है ना, हेतल है, सोलंकी परिवार, नीलम है, और वियाना में अनिल सोनी जी हैं, और कराची में जहीर खान भाई हैं।
1: This is Like a Radio. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: गांव में चोरी हो गई। अब साहब पुलिस को चोर की तलाश और मिल नहीं रहा है। तभी भीड़ में से एक नौजवान निकल के आया, कहता आई कैन टेल यू, बताओ बताओ बताओ। सबने घेर लिया भाई, पुलिस वाले भी नजदीक आ, बोल हाँ बताऊंगा, मुझे पता है किसने चोरी की है। अरे बताओ ना भाई, तो कहता कान में बताऊंगा। थानेदार के कान में कहता, सर मुझे ये किसी चोर का काम लगता है। कर लो बात भाई, शरीफ आदमी चोरी थोड़ा ही करेगा, काम तो चोर का ही है। हमसे पूछो, हमको पता है चोर का नाम और चोर का काम।

0: brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और बहनों भाइयों, लाइका एक्स्ट्रा पर नया एपिसोड आ गया है। पॉडकास्ट का नाम है, टाइटल है इंडिया वीक शोकेस, होस्टेड बाय अनुज राडिया। एंड टॉकिंग पॉइंट्स हैं भाई उसमें, जो लाइका रेडियो नेटवर्क है ना, आप जानते हैं कि ऑफिशियली रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम 26 मई टू 31st ऑफ मे, फ्रॉम 26 मई टू 31st मई। अब बात यह है कि इसमें काफ़ी कुछ मसाला है जो आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है, पर इसके अलावा हमारे और जो पुराने एपिसोड्स हैं वो भी आपको लाइका एक्स्ट्रा पर उपलब्ध रहेंगे, मिलेंगे। जो पिछले एपिसोड्स हैं, वेडिंग्स एंड बियॉन्ड, सम वो होम स्कूलिंग एंड डिबेट, विल्सन प्रोबेट, तो ये सब उपलब्ध हैं, ज़रूर देखिएगा और काफ़ी कुछ जानकारी है लीजिएगा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.

0: शब्दावली भले ही कैसी हो भाई, जब वो मुकेश जी के कंठ से फूटती है तो ये विशेष संगीत बन जाता है।
1: बेदेखे आराम नहीं,
0: और देख ले तो फिर चैन नहीं।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Leica Radio. Currency updates are sponsored by Lemfi Mobile App. Send money to India, Pakistan, and Bangladesh swiftly from your phone.
2: Let me tell you the rates if you want to send money to India, Pakistan or other different countries in kya kehte hain ki apne subcontinent. Well, 1 pound ke badle they are giving 128.24 Indian rupees. Aur Pakistani kitne? 374.07. Sri Lankan 437.71. Bangladeshi Take 164.24. And Afghani 83.3.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download Lemfi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
2: और साहब गोल्ड रेट में थोड़ी सी गिरावट है. हमारे सुबह से जो थोड़ा कम हुआ है. एट द मोमेंट द गोल्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 109.68 pounds per
1: gram. Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
2: टाटा आईपीएल 2026 भाई ये मैचेस हो रहे हैं और धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ रहे हैं और रोमांच बढ़ता जा रहा है. कल का मैच जबरदस्त मैच था भाई. स्कोर 200 से ऊपर गया दोनों टीमों का, लेकिन जीत हासिल हुई मुंबई इंडियंस को. यस, यस्टरडे धर्मशाला के ग्राउंड में खेला गया पंजाब किंग्स वर्सेज मुंबई इंडियंस मैच, और ये मैच मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से जीता. और भाई वो तिलक वर्मा, अरे साहब 33 गेंदों पर 75 रन बनाए उन्होंने. और इनाम क्या मिला है कि श्रीलंका जाने वाली जो इंडिया ए क्रिकेट टीम है उसका उन्हें कैप्टन बनाया गया है. मुबारक हो भाई तिलक जी. और आपको ये बता दें कि जो आज कल का मैच उन्होंने 6 विकेट से जीता मुंबई इंडियंस ने, आज का कौन जीतेगा? वेल आज है लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच भिड़ंत. अब से लगभग 5.5 घंटे बाद ये मैच शुरू होने वाला है, यानी दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगा. और स्कोर के आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे. लखनऊ के ग्राउंड में खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला आईपीएल का.
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे. रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए.
4: Leica Radio. Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham,
5: where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
4: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
5: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
4: For sponsorship and details, call 07803 633 926.
6: This Eid ul-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts

0: बड़े शौक, अपने जमाने का और हर जमाने का भाई हिट गीत कह सकते हैं आप इसे। पर शब्दावली भी देखी है, प्यार होता ही वही है जो अधूरा है, जो पूरा हो गया वो तो समझो पूरा हो गया, खत्म। आधा है चंद्रमा, महेंद्र कपूर और आशा भोसले गा रहे थे ये गीत। भाई महेंद्र कपूर तो इस सप्ताह के कलाकार हैं, इसलिए उनकी आवाज में तो और भी गीत आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बताने वाले हैं कि आज 15 मई को किसका जन्मदिन है। एक तो भाई वो नाजिर हुसैन साहब, काफी फिल्मों में पिता के रोल में वो नजर आए थे, उनका आज बर्थडे है। वो 15 मई और 1922 में जन्मे थे। और आज जन्मदिन मनाने वालों में कुछ और नाम है कोई नहीं मेरे पास तो भाई, इज इट, आई एम नॉट श्योर कि प्रीति गांगुली का जन्मदिन है या नहीं, पंकज उधास, कई नाम सामने से गुजर रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जो गीत हमने आपको सुनवाया ना, ये गीत याद दिला रहा है हमें महिपाल की। अपने जमाने के बड़े भाई वो टॉप एक्टर होते थे, और खासकर फिल्म संपूर्ण रामायण ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बनाया, क्योंकि जो फिल्में नहीं देखते थे, जो सिनेमा को बुरा मानते थे, वो भी संपूर्ण रामायण को देखने के लिए सिनेमा हॉल में ऐसे प्रवेश करते थे जैसे मंदिर में एंटर कर रहे हों। महिपाल की आज पुण्यतिथि है, उनकी बरसी। ही डाइड इन 2005, लेकिन भाई उससे पहले आई थिंक नवरंग और जबक, माया बाजार, पारसमणि, ऐसी ऐसी फिल्में उन्होंने दी, और इसलिए आज याद किए जाते हैं। मणिपाल चंद्र भंडारी, दैट इज द पूरा नेम, उनका पूरा नाम। देशराज बैसन साहब, बहुत सारी जानकारी आपने भेजी है भाई, प्रोग्राम में सारी तो नहीं शामिल कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि बड़ी सॉलिड जानकारी है। और महिपाल नाम से वो प्रसिद्ध थे, लेकिन पूरा नाम था उनका महिपाल भंडारी। और भाई उन, मेरा ख्याल है वो 86 की उम्र में, 86 बरस की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ था, आज के दिन 15 मई 2005 में। याद कर रहे हैं उन्हें इस गीत के माध्यम से, और जन्मदिन नाजिर हुसैन साहब का। और भाई अगर आपके घर परिवार में भी किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK आज एक पाउंड के बदले 127.75 रुपए दे रहे हैं। इफ यू वांट टू सेंड मनी टू योर डियर एंड नियर, सो जो है 127.75 रुपीज इज द रेट अगेंस्ट पाउंड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Lister, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 lbs सिर्फ $24.99.
2: Hamza Samosas 3 for $10.
3: Top Star Fried Onions only 99p.
2: Suhana Masalas 2 for $1.50. Ramdev Namkeen 2 for $1.49.
3: Hira Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
2: Kesar Mango Pearl 149. Full Makana 245. Falcon Cash and Carry
3: 82 Assistant Street LE12JU Ya Rowlatt Hill LE54UN.
2: While stocks last.
4: Mom always said, Beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
5: This Eid al-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
9: फोन 020-8574-8410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 020-8574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
13: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
12: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
13: Or sales at leicamedia.co.uk.
14: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
15: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24-7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और भाना भाई आप जानते हैं कि इस सप्ताह के कलाकार का नाम है महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर बड़ी बुलंद आवाज की भाई गायक कलाकार और शुरुआत उन्होंने भी भाई शास्त्रीय संगीत से की थी। बहुत सारे गीत आपने सुने इस सप्ताह मेरे अपने प्रोग्राम में, कई गीत उनके बज चुके हैं आज। महेंद्र कपूर इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। ऐसे कलाकार जो दुनिया से चले गए हैं पर गीतों में मौजूद हैं, यादों में मौजूद हैं।

0: महेंद्र कपूर अपनी आवाज के माध्यम से आज भी जिंदा है, शाश्वत है, क्योंकि स्वर ईश्वर है, ये कभी नहीं मरता। लता जी की आवाज के साथ उन्होंने आवाज मिलाई इस गीत में, एंड दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म जब याद किसी की आती है, धर्मेंद्र और मारा सिन्हा की फिल्म 1967 में आई थी।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

कहते हैं कि भाई वीकेंड पर पंकज उदास का जन्मदिन है, भाई उस दिन हम तो होंगे नहीं, या वीकेंड पे मैं नहीं होता हूँ, लेकिन पंकज उदास मेरे दिल में और आपके दिलों में रहते हैं।

0: गॉट अ वॉइस, ही वॉज ब्लेस्ड विद पंकज उधास। भाई वैसे तो संगीत इनके परिवार में रचा बसा है, निर्मल उधास भी गाते हैं और मनहर उधास तो बहुत सारी फिल्मों में अपनी धाक जमा चुके हैं, लेकिन पंकज उधास ने वो चिट्ठियाई गीत से बहुत लोगों को रुलाया था। भाई इनका बर्थडे पड़ता है 17 मई को और 17 मई को हम होंगे नहीं यहाँ, इसलिए एडवांस में आज उन्हें याद कर लिया हमने। ही वॉज बॉर्न ऑन 17 मई 1951। पंकज उधास की भाई प्रशंसकों के लिए गीत हमने प्रोग्राम में शामिल किया और अब क्या एक सूचना है हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए। एक तो ये कि भाई लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन, डिटेल्स एट laikaradio.com। और भाई लाइका रेडियो नेटवर्क इज द कंफर्म्ड पार्टनर ऑफ कुमार सानू लाइव कॉन्सर्ट एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलीडे मंडे 25 मई। भाई रॉयल एल्बर्ट हॉल जो है वो इतना प्रतिष्ठित हॉल है कि उसमें एक बार हमने श्रिया घोषाल और उदित नारायण का शो करवाया तो उदित भाई कहने लगे कि रवि जी इस हॉल में शो करना मेरे लिए गौरव की बात है। और फिर उन्होंने उसके कई कई इस कॉर्नर में, कभी स्टेज पर एक कॉर्नर में, कभी दरवाजे के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाए और दैट वॉज द मेमोरेबल जो प्रेजेंटेशन बाई उदित भाई एंड श्रिया घोषाल, तो बहुत अच्छा लगा था। तो वहां पर अब परफॉर्म करने जा रहे हैं कुमार सानू।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
2: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ऊडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
3: ये है लाइका रेडियो।
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: तेरे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद। भाई सावन कुमार मेरे घर पर आए, हमने घंटों बातें की बैठ करके। ये उनका लिखा गीत आप सुन रहे थे उनकी फिल्म हवस से, और गीत लिखा सावन कुमार ने, और ये भाई संगीतबद्ध किया इसे उनकी पत्नी उषा खन्ना जी ने। और सावन कुमार ने कई गीत लिखे, बाद में ये सेपरेट भी हो गए, लेकिन काम साथ करते रहे। कई फिल्मों में इन्होंने जो डायरेक्ट की वो फिल्में या इन्होंने गीत लिखे, संगीत उषा खन्ना का ही रहा। और ये था हवस फिल्म का गीत। सावन कुमार 1936 में जन्मे थे और 2022 में उनका निधन हुआ, लेकिन उससे ठीक पहले वो आए थे, मुलाकात हुई घर पर उनसे, और उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें फ़ोन किया करता था। तो लास्ट टाइम जब उन्हें फ़ोन किया 9 अगस्त 2022 को, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मगर भाई बता दो कितने साल के हो गए। कहते हैं बस समझ लो जितने के हो गए पूरे हो गए। ये नहीं पता था भाई उनके मुख में सरस्वती निवेश कर रही है कि वो जो कह रहे हैं वो होने वाला है। और उसी महीने 25 अगस्त को उनका निधन हो गया अपने सावन कुमार साहब का। उनकी फिल्म का गीत सुनवाया, तो आज सावन फिर से आएंगे, वो क्या कहते, सावन की यादें आएंगी, सावन के गीत आएंगे और सावन साहब याद आएंगे।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. ये है लाइका रेडियो।
2: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मां आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक।
3: जेज एंटरटेनमेंट लेने आवी रह्या छे सखना रे जो हस्बैंड जी,
2: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज। 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मां बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk। सकना रहे जो हस्बैंड जी।

0: भाई ये कुक कुक कुक कुक मुझे याद दिला रहे हैं कि भाई प्रोग्राम खत्म करके जाके कुकिंग भी करनी है। पत्नी की ओर से धमकी मिली है कुकिंग करनी है। बेटा कहता पापा मैं शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों बेटा? पापा मुझे डर लगता है, सुना शादी के बाद आजादी छिन जाती है। बीवी कहती है कुक कुक कुक कुक कुक कुक कुक कुक कुक। अरे नहीं बेटा, कोई आजादी नहीं छीनती है, देख मुझे देख ले, मेरी क्या आप पूरी तरह आजाद हूं, अपनी मर्जी से मैं बर्तन धोता हूं, अपनी मर्जी से मैं हुवर करता हूं, अपनी मर्जी से पोछा लगाता हूं, आजादी पूरी तरह आजाद हूं। और राजेंद्र राजी थैंक यू वेरी मच, आप भी सब कुछ अपनी मर्जी से करते मुझे पता है। सत्यनारायण सैनी इंडिया में हमें सुन रहे हैं, वहाँ से मैसेज भेज रहे हैं। और भाई और कौन कौन सुन रहे हैं, ये फरीदा गुलाम अली कहती है वो गीत मेरे नाम कर दो, कौन से वाला, वो आधा है चंद्रमा। ऐसा है फरीदा जी, आपने पिछली पेमेंट भी नहीं की अभी तक, गीत सारे अपने नाम किए जा रही हैं, बिल नहीं चुका रही है। थैंक यू वेरी मच, कीप लिसनिंग। और महेंद्र बरजारिया जी सो नाइस ऑफ यू, भाई गीत पसंद कर रहे हैं आप, ये बात मुझे पसंद आ रही है। आप सबके नाम हैं एक एक गीत, गीत का एक एक शब्द। हाँ पढ़ेंगे पीछे, कुछ मत कर।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और साहब रेट सुन लीजिए उनके, फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 128.04 इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी 372.36, श्रीलंकन 438.57 और बांग्लादेशी टके 164.09, अफगान अफगानी 83.26.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: गोल्ड के बारे में बता दें आपको, द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 109.78 पाउंड्स पर।
3: राम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, वाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स। विजिट राम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड लेस्टर और कॉल 0116-266-4278। Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. India cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Cricket ki baat karein bhai, Tata IPL 2026. क्या कहें भाई, अपने चरम पर है। और पहले तो बताएं कल के मैच में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को हरा दिया 6 विकेट से। दोनों टीमों ने 200 से ऊपर स्कोर किया था, लेकिन साहब मैच जीता मुंबई इंडियंस ने एक गेंद के रहते 4 विकेट गंवाकर। और आज का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब से करीब 2 घंटे बाद शुरू होगा, यानी दोपहर बाद 3 बजे मैच शुरू होगा। और बहनों भाइयों ये मैच खेला जाएगा लखनऊ के मैदान में, पर स्कोर के आंकड़े यहां आपको बताए जाएंगे, सुनवाए जाएंगे लाइका रेडियो नेटवर्क पर। सुनते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा म्यूजिक एंड क्रिकेट।
3: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द एफसीए। लाइका रेडियो।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
7: Atif Aslam live in the UK.
6: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
7: Book your tickets now at AXS.
6: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Leicester, it's time to celebrate.
9: Rouge Millers brings you the ultimate 50 fest.
8: 50 days of giveaways worth a huge £50,000. We're talking gold coins,
9: LED TVs, designer saris, and over 50 luxury hampers up for grabs.
8: Shop and you're automatically entered into our lucky draw or discover hidden vouchers as you go.
9: Plus, instant rewards on fresh fruit and veg. Spend £5 and get a free hand wash.
8: £10 for a food chopper. £25 for a tea pan or kadhai pan.
9: Rouge Millers, Melton Road, Leicester. 50 fest. Every shopper's a winner.
10: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
12: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
13: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
12: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
3: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio August 15th and 16th at Abbey Park Leicester
14: It was just another day A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too

0: Nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus, a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: और बहनों भाइयों, याद दिला दूं कि रवि शर्मा के कार्यक्रम को समेटने के बाद सरिता सबरवाल आपकी मेजबान होंगी और वो जगह भरेंगी बाली ब्रह्म भट्ट की, जो आजकल छुट्टियों पर हैं। अब भाई कार्यक्रम समेटने से पहले विमल रायन साहब, थैंक यू वेरी मच। आप कहते हैं कि हम आपके साइलेंट लिसनर हैं। अरे नहीं, आप दिल में धड़कते हैं, दिल बंद करके, धड़कन बंद करके। थैंक यू वेरी मच, आपकी आवाज़ हम महसूस करते हैं। और आप कौन है जी? मधु जी, आपका संदेश मिल गया सर आंखों पर, थैंक यू। और आप हैं जहीर खान, कराची वाले, लिखते हैं आपने वो यूनिवर्सिटी वाली बात बताई कि आपने उसकी लड़की के पर्स से 10 रुपए निकाले। आपको कैसे पता था कि उसके पर्स में पैसे हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए वेरी गुड क्वेश्चन। भाई वो ऐसा है कि एक अच्छा चोर ना सारी खबरें रखता है, तजर्बे की बात है। देखिए इतना आसान नहीं है, वैसे बता दूं आपको, बड़ी मेहनत का काम है चोरी, ऐसे नहीं। हम जज ने भी पूछा था, मिस्टर चोर है, कैसे चुरा लेती हो तुम इतनी सफाई से लड़कियों के पर्स से पैसे? तो चोर ने कहा था, हुजूर यहाँ जल्दी में तो नहीं बता सकता, आज रात मेरे साथ चलो ट्रेनिंग दूंगा, आपको परफेक्ट चोर बना दूंगा एक हफ्ते में। थैंक यू वेरी मच। तो भाई जहीर भाई, साथ चलो एक दिन, मिलके चुराएंगे बांटने के बाद में। लीजिए बहन भाइयों, कार्यक्रम समेट रहा हूँ और सरिता सबरवाल को स्टूडियो सौंप रहा हूँ। हमारी आपकी अगली मुलाकात होगी सोमवार को 10 बजे के खबरों के बाद। तब तक सोचिए और सोच के बताइए वीकेंड पर 2 दिनों के अंतराल में क्या कुछ जुटाऊं, आपके लिए क्या लेके आऊं।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीता फिल्म दीदार से 1992 की फिल्म थी और 1992 की इस फिल्म में काम किया था अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, अनुपम खेर ने एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रमोद चक्रवर्ती जी ने। संगीत था आनंद मिलन का। इस फिल्म के सारे गाने काफ़ी मशहूर हुए थे। एक गीत आज के प्रोग्राम में शामिल किया। कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में भी इस फिल्म के गीत आप तक पहुंचाऊं। और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म जीवा। जीवा 1986 की फिल्म थी। हैव यू सीन द फिल्म? मैंने नहीं देखी है। संजय दत्त और मंदाकिनी ने इस फिल्म में लीड रोल किए थे। द फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय राज एन सिप्पी एंड इस फिल्म का संगीत दूर से पहचाना जाता है आर डी बर्मन साहब का। और गीत आपको पसंद आए दोनों के दोनों। आपने मेरे स्वागत में बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचाए हैं लेकिन मैं आप सबका स्वागत करती हूं। आपका खैर मकदम है, खुशामदीद। और मैं यही चाहूंगी जहां भी रहें आप खुश रहें, खैरियत से रहें, जिंदगी के हर पल को इंजॉय करते रहें। इफ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो चेयर अप। लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू इंजॉय। जियो शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए। गाने तो चुन चुन कर लाती हूं मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। आपके मन को भा जाएं तो मुझे इशारा तो आपसे जरूर चाहिए। और इशारे के लिए व्हाट्सएप मैसेज भेजना बहुत जरूरी है। तो जल्दी जल्दी अपने अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, भी आज ये क्या रेट दे रहे हैं आपको बता दें सबसे पहले तो कि आज का रेट थोड़ा कम हुआ है। 127 रुपीस एंड 75 पैसा अगेंस्ट 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड। इंडिया में कहीं भी पैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए कराएंगे ट्रांसफर तो आपको यही रेट मिलने वाला है। पर डिपेंड करता है कितना अमाउंट करें। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना अच्छा आपको रेट मिलेगा। और किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यू कैन यूज़ द ब्रांच, वाया ब्रांच करें ऑनलाइन या फिर यूजिंग योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: भी पहले दो गीत सुनकर शायद आपको पता चल चुका होगा कि कौन सा वर्ड दोनों गीतों में आपने सुना तो शायद वही कुछ सिलसिला चलने वाला है। तो सोचते रहिए और मुझे बता दीजिए कि कौन सा वर्ड आपको लगा कि दोनों गीतों में था। और थर्ड गीत में भी, यस थर्ड सॉन्ग में भी वही गाना, वही वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन ये बता दूं ये प्रोग्राम जो कि बाली ब्रह्म जी पेश करते हैं मंडे टू फ्राइडे 1 to 4, दैट्स बीन ब्रॉट टू यू बाय
2: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store. Lister, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 lbs सिर्फ $24.99.
2: Hamza Samosas 3 for $10.
3: Top Star Fried Onions only 99p.
2: Suhana Masalas 2 for $150. Ramdev Namkeen 2 for $149.
3: Hira Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
2: Kesar Mango Pearl 149. Full Makhana 245. Falcon Cash and Carry
3: 82 Assistant Street LE1 2JU या Rowlatt's Hill LE5 4UN.
2: While stocks last.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
7: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
6: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
7: Also explore 2026 cruises.
6: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
8: साला कुल का दीपक समझे थे फुलझड़ी निकला।
9: 15th मई को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका। कौन पत्नी कौन वो, सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग। पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में।
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fryam shape mein hai wo bachpan ki yaad.
13: Snack time hunger ko banaye aur be tasty with Jaimin's Fryams in different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri aur shizwan with best quality and same ethnic taste.
12: Jaimin Fryams available at your nearest ethnic grocery stores.
14: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
15: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
14: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
15: Or sales at leicamedia.co.uk.
16: New hits on Leica Radio.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और आपकी मैसेजेस की तरफ एक नज़र करती हूँ तो इतने सारे मैसेजेस ऑन स्क्रीन हैं। महेंद्र बरजारिया जी साउथ एरो में और आपने लिखा है शंकर जैक्सन का संगीत बहुत खूबसूरत। उल्लास टोरंटो में विनी विनोद एंड वरुण थैंक यू। अर्जुन एंड विजय गुदुरी इन सटन। मृदु जी मिसिस पाके चियांग हाना भरत गंगाराम जी पमी सिंह इन स्लाव एजाज इन चशम सुनीता शर्मा अरुणा जी एंड आपके नाम नहीं लिखे रानी जी जैस्मिन जी गुरुदेव जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी लिस्ट है पर बारी बारी आपकी भी बारी आ जाएगी।
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: भाई फियाज साहब आपने लिखा है कि अजाज साहब आपने लिखा है कि ये फियाज अहमद साहब की एक पोइट्री की लाइन है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, तो वो अगर हो सके तो प्रोग्राम में शामिल करना, आई डेफिनेटली ट्राई. थैंक यू एवर सो मच कि आप बड़े प्यार से प्रोग्राम सुन रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं. और अब एक सूचना, और उस सूचना कम है, आपको थैंक्स करना ज़्यादा है, क्योंकि आप ही की दौलत हम हैं. अगर आप अपने कान हमें उधार ना देंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते. थैंक यू सो मच, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है आप सभी का मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि बड़े प्यार से आप सुनते हैं और ज़्यादा देर तक सुनते हैं. यस, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें रेजार से मिली है. लेटेस्ट रेडियो लिसनिंग फिगर्स आर इन एंड लाइका ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड स्टिल द नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंडन. लाइका रेडियो एंड लाइका Gold remained consistent and with Like a Gold now being listened to longer than the other commercial Asian radio stations in the UK according to latest HR data. So thank you from bottom of my heart.
2: Like a Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m.
1: And another classic gana, Lata Mangeshkar and Asha Bhosle, dono bheni ek saath.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, we जल्दी से बता दें आपको करेंसी का रेट मार्केट में क्या चल रहा है. एक पाउंड के बदले आपको मिल सकते हैं इंडियन रुपीस 127.98, पाकिस्तानी रुपीस 371.74, श्रीलंकन रुपीस 437.78, बांग्लादेशी टका 163.83, अफगानीज 83.7 and US dollars 1.36.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
1: Right, भी गोल्ड का रेट भी जान लें कि आज बढ़ा है या कम हुआ. कम हो गया है गोल्ड का रेट. इस वक्त मार्केट में गोल्ड का रेट है 109 pounds and 78 pence पर ग्राम.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Cricket Score Updates. India Cricket Score Updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Right, we IPL ke matches chal rahe hain. Aap sabhi achhi tarah se jante hain. Lucknow Super Giants and Chennai Super Kings, sabhi super hain. Super Kings के बीच में मैच होने वाला है. आज 3 बजे शुरू होगा एंड दिस इज़ द 59th मैच जो होगा लखनऊ में. तो तैयार रहिएगा, आपको अपडेट करते रहेंगे हम. आप सुनते रहिए.
0: By Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England Cricket.
3: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat.
4: Bali Brambat.
3: Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
1: और वही अब मेरे साथी जो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी पसंद का गीत कब आ रहा है. बहुत से मेरे साथियों ने इस गीत की फरमाइश मुझ तक पहुंचाई. अब मेरे से नाम मत पूछेगा. आप जानते हैं ना कि सरिता थोड़ी सी भुलक्कड़ भी है और नाम इतने सारे नाम हैं, तो जिसका नाम लूँगी और जिसका नहीं लूँगी वो नाराज़ हो जाएंगे. तो नाम नहीं आपके लूँगी, लेकिन आप सबके मैसेजेस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. और व्हाट्सएप मैसेजेस भी मैं आप सभी को भेज रही हूँ. आप इसी तरह से मेरा साथ निभाते रहें. इस आवर में आँखों की बात हुई, तो नेक्स्ट आवर में हम माधुरी दीक्षित जी का बर्थडे मनाएंगे. सो आप मेरे साथ साथ रहिएगा. एंड जो अगर आपकी कोई ख़ास पसंद हो तो आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि माधुरी जी की कौन सी फ़िल्म आपको बहुत पसंद आई थी और उस फिल्म का कौन सा गीत आपके दिल के बहुत करीब है. स्टे ट्यून्ड.
5: यू नो द क्लीन फ्रेश फीलिंग आफ्टर ब्रशिंग. Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy.
6: Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
5: Siddhayu, Ayurved that fits your life.
7: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
4: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colorful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation, and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to Derby Theatre 12 to the 16th of May. For tickets and more info, click derbytheatre.co.uk. Radio partner Leica Radio.
3: Leicester, the biggest celebration of the year is here.
6: 50 Fest at Root Millers, powered by Kalyan Jewelers,
3: Kavya Silks,
6: Rafiq Catering
3: and Jungle Club,
6: Glozo,
3: Mars, Dreams
6: and Neslo Estate Agents.
3: Join the fun with games, dancing and live anchoring and walk away with amazing prizes. Spend £50 for 1 kg of ghee or £200 for 15 snacks of sugar.
6: Plus 2,000 more Root Packs hidden vouchers. All our customers are winners. With £50,000 in prizes to be won, this is one event you can't miss. Root Millers on Melton Road, Leicester.
8: Weddings, celebrations, corporate events.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और दोनों गाने पिक्चराइज हुए थे माधुरी दीक्षित पर, जो आज अपना बर्थडे मना रही है. हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई. एंड 15 मई 1967 में इनका बर्थ हुआ था. बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई, माधुरी दीक्षित मेड हर एक्टिंग डेब्यू इन 1984 विद द लीडिंग रोल इन ड्रामा अबोध. आफ्टर अ फ्यू अनसक्सेसफुल फिल्म्स कमर्शली, पर उनकी एक्टिंग को हमेशा ही पसंद किया गया था. पर उनकी फिर तेजाब ने हंगामा मचा दिया था. तेजाब में उनके एक तो तीन चार वाला गाना कितना मशहूर हुआ, पर वो गीत आज ही सुबह आपने काजल के शो में सुना इसलिए मैं शामिल नहीं कर पाई. पर आपको मालूम है कि तेजाब में इनके काम को कितना अप्रिशिएट किया गया था. और थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी. पहले तो ये बता दूँ, पहला गीत मैंने चुना हम आपके हैं कौन फिल्म से, और दूसरा गीत था फिल्म दयावान का. इनफैक्ट दयावान वो फिल्म थी, कमर्शली बहुत सक्सेसफुल हुई थी इन 1988, जिसमें ये गाना खास तौर पर बहुत मशहूर हुआ था. और इस फिल्म में ये गाना पिक्चराइज हुआ था. इनके साथ थे विनोद खन्ना. यस, आई कैन विजुअलाइज नाउ कि विनोद खन्ना थे इनके साथ. बहुत प्यारी फिल्म थी और इनका काम भी बहुत बहुत पसंद किया गया था. हम आपके हैं कौन का गीत जो मैंने आज के प्रोग्राम में शामिल किया, उस फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे थे. एंड दिस वॉज राजश्री प्रोडक्शंस, फैमिली ड्रामा था हम आपके हैं कौन, ऑपोजिट सलमान खान. एंड द फिल्म मर्ज एज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ हिंदी सिनेमा एंड मेड कितने 135 बिलियन रुपीज. एंड वर्ल्ड वाइड इसने बनाए थे इतने पैसे. एंड ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ फिल्म शोले इन 1975 एंड इट बिकेम द हाइएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म आफ्टर इट्स थिएट्रिकल रन एंड हेल्ड द रिकॉर्ड फॉर 7 years. फेच्ड हर 3rd Filmfare Award for Best Actress and for her 1st Screen Award for Best Actress as well. And the film won a National Award as well. Yes, the film won 2 National Awards, including the Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment and the Millennium Edition of the Guinness Book of World Record. So, Madhuri Dixit ki acting ke baare mein kya kahun? She's so simple, she's so natural, she's a wonderful dancer and unki aankhein bolti hain, unke expressions bahut khoobsurat. Thodi thodi baatein main aapke sath share karungi kyunki aap jante hain na ki waqt kitni tezi ke sath daudta hai.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर इनके जरिए आप पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है. यू कैन यूज़ द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन और यूजिंग द योनो एसबीआई मोबाइल ऐप. और आज आपको रेट मिल रहा है 127 रुपीज़ एंड 75 पैसा अगेंस्ट 1 British sterling pound.
1: India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.

0: दिल तो पागल है इस फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को 1997 में। ये फिल्म आई थी, शाहरुख खान थे हीरो और हीरोइन थी दो, माधुरी दीक्षित एंड करिश्मा कपूर दोनों को ही बेहद पसंद किया गया।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Leica Radio.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और इस गीत के साथ ही इस फिल्म के इस गीत के साथ बन गई ये धक धक गर्ल।

0: गीत के साथ बोलने की माफी चाहती हूँ। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजें थी और ये गाना अनिल कपूर एंड माधुरी पर पिक्चराइज हुआ था। फिल्म का नाम था बेटा। इस फिल्म में भी इनकी एक्टिंग लाजवाब थी।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. LYCA. This is Leica.
0: और साथ साथ आपको कुछ याद भी दिला दें, कुमार सानू लाइव। यस, लाइका रेडियो नेटवर्क इज द कंफर्म्ड पार्टनर ऑफ द कुमार सानू लाइव कॉन्सर्ट एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलीडे मंडे। तो अपनी टिकटें बुक करा लें, 25th मई को ये शो हो रहा है। और मेला 26 के बारे में भी बता दें, द लाइका रेडियो इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th एंड 16th ऑफ ऑगस्ट एट एबी पार्क। ऑल्सो द Bradford City Mela on 1st and 2nd of August at City Park and Century Square mein. So ye dates yaad rakhiye.
1: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
0: और यहीं मैं किशोर कुमार जी के सभी फैंस को भी एक सूचना देना चाह रही हूँ। कॉलिंग ऑल किशोर कुमार फैंस, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन, इंद्राणी, संजय एंड द 515 बैंड एंड इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th जून एट द प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइका गोल्ड रेडियो। सो अपनी टिकट्स आज ही बुक करा लें।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Extra Podcast Update.
0: चलिए भाई एक बात और भी बता देती हूँ लाइका एक्स्ट्रा के बारे में। पॉडकास्ट एपिसोड 16 इज नाउ रेडी। इंडिया वीक शोकेस है एंड अनुज राडिया इसे पेश करेंगे। ही इज द होस्ट। टॉकिंग पॉइंट्स हैं इनके, लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम 26th ऑफ मे टिल 31st ऑफ मे। एंड पुराने भी अगर आप देखना चाहते हैं एपिसोड्स तो वो भी रेडी हैं। वेडिंग and beyond, homeschooling, debate and wills and probate. And Leica Extra podcast, agar aapko nahi pata kahan dekh sakte hain, to Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms par hum available hain.
1: Leica Extra is here. Ye hai Leica Radio. Leica
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pearl, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Leicester, it's time to celebrate.
4: Rouge Millers brings you the ultimate 50 fest.
3: 50 days of giveaways worth a huge £50,000. We're talking gold coins,
4: LED TVs, designer saris, and over 50 luxury hampers up for grabs.
3: Shop and you're automatically entered into our lucky draw or discover hidden vouchers as you go.
4: Plus, instant rewards on fresh fruit and veg. Spend £5 and get a free hand wash.
3: £10 for a food chopper. £25 for a teapan or kadhai pan.
4: Rouge Millers, Melton Road, Leicester. 50 fest, every shoppers a winner.
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th.
3: 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203 773 633. Now, APTA bonded.
9: Mantra Holidays.
10: What's your travel mantra?
9: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All atoll protected. Call 0207 132 0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
11: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स.
12: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
11: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स.
1: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन.
3: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में. कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ. कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा.
1: On this week's Leica Extra podcast, we bring you a special on India Week, hosted by Anuj Radia.
13: Saw Calpol, children's medicine, and there was a little Indian girl on the box. Now, for me, that's a big change in how we're identifying and seeing ourselves. When my parents were shopping in Boots at that time for me, they would never have seen a little Indian girl on a box.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. This is Leica Radio across the Midlands.

0: फिल्म साजन से चुना मैंने इस गीत को, और माधुरी दीक्षित का काम इस फिल्म में भी बहुत खूबसूरत था, और माधुरी दीक्षित के साथ थे सलमान खान एंड ऑल्सो संजय दत्त। बहुत खूबसूरत फिल्म थी, अगर आपने नहीं देखी कभी भी मौका मिले तो ज़रूर देखें। माधुरी दीक्षित हैज रिसीव 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स फ्रॉम अ रिकॉर्ड 17 नॉमिनेशंस एंड इंक्लूडिंग 4 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर दिल इन 1990, बेटा के लिए 1992 में, हम आपके हैं कौन इन 1994, दिल तो पागल है इन 1997, एंड अ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर देवदास इन 2002, एंड शी अर्न्ड अ फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड फॉर कंप्लीटिंग 25 इयर्स इन द इंडस्ट्री, एंड इन 2008 शी इज अवार्डेड एज पद्मश्री, द फोर्थ हाईएस्ट इंडियन सिविलियन अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द arts, and 2023 May she was awarded the special recognition for contribution to Bharatiya Cinema Award. इतने सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड जनता का प्यार।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 128.6, Pakistani rupees 371.81, Sri Lankan rupee 438.66, Bangladeshi taka 163.84, Afghanis 83.40 and US dollars 1.36.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: And gold ka rate is what market mein 109 pounds and 78 pence per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leica Radio.
1: London, Midlands, Manchester. India cricket score update. The Leica Radio Network. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: राइट भाई, 3 बजे मैच शुरू होने वाला है लखनऊ में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, और हम आपको लखनऊ सुपर जायंट्स दे चूज टू फील्ड, सो मैच शुरू होने वाला है बस।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
0: और ये गीत मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म राम लखन, इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इस फिल्म में भी, अंजाम में भी बहुत खूबसूरत एक्टिंग।

0: माधुरी दीक्षित जी को उनके बर्थडे पर हम बधाई देते हैं बहुत बहुत। उनकी यादगार फिल्मों में पुकार मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड आरजू में भी अक्षय कुमार एंड सैफ अली के साथ इन्होंने काम किया। बहुत सारी फिल्में हैं लेकिन सभी गीत नहीं शामिल कर पाऊंगी। और अब मैंने एक डायलॉग जैसे है पोइट्री रिसाइटिंग है जो माधुरी दीक्षित पर नाना पाटेकर ने किया था फिल्म वजूद में, तो वो हमें न्यूज़ तक लेकर जाएगी और न्यूज़ के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ रहूंगी। सुनते रहिएगा।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
2: Lister, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो Falcon Cash and Carry. मुस्तफा बासमती XXL Rice 40 LVS सिर्फ $24.99.
2: हमजा समोसास 3 for 10.
3: Top Star Fried Onions only 99p.
2: सुहाना मसालास 2 for 150. रामदेव नमकीन 2 for 149.
3: Hilogram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
2: केसर Mango Pearl 149. Full Makana 245. Falcon Cash and Carry
3: 82 Assistant Street LE1 2JU या Rowlett's Hill LE54UN.
2: While stocks last.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just 711,000 pounds.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's. Please apply.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
10: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यू छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
11: जेज एंटरटेनमेंट लाइने आवी रह्या छे सखना रे जो हसबंड जी
10: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा UK.
12: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
13: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
12: So where do we find something like that now?
13: Right here in London. Baidyanath Sidhayu hair oil, shampoo and toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made it the way our eldest used it.
14: From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy.
15: Sidhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.

कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो मैं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी, कैसे बताऊं मैं तुम्हें?

ये जो तुम्हारा रूप है ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरसा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शोखियां ये मस्तियां तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली, होठों में कलियां खिल गई, आंखों को छीले मिल गई, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों तितलियां, बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की। कैसे बताओ मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की, कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ।

कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम, पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर चिन्ह में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम।

0: माधुरी दीक्षित पर ही पिक्चराइज किए गए दो गीत और मैंने प्रोग्राम में शामिल किए। आज अपना बर्थडे मना रही है माधुरी दीक्षित। ये गीत था फिल्म कोयला से राजेश रोशन जी का संगीत, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज और पर्दे पर दिखाई दी थी माधुरी दीक्षित। और इस फिल्म के हीरो थे शाहरुख खान। अमरीश पुरी का भी बहुत बहुत अच्छा रोल था। सुभाष घई साहब ने बनाई थी ये फिल्म। एंड खतरों का खिलाड़ी वॉज द अदर फिल्म जिसका गीत आपने सुना। मोहम्मद अजीज एंड अनुराधा पौडवाल की आवाजों में तुमसे बना मेरा जीवन, वो भी फिल्म बहुत खूबसूरत थी। उम्मीद करती हूँ कि सभी गाने आपको पसंद आ रहे हैं। अब आर्टिस्ट ऑफ द वीक में महेंद्र कपूर साहब बहुत जल्दी हम एक गीत सुनने जा रहे हैं उनकी आवाज में। एंड आई एक्चुअली कुडंट डिसाइड कि कौन सा गीत मैं शामिल करूँ फिल्म गुमराह का, पर जो मैंने चुना है वो गाना बहुत ही रुगी हमारे स्टूडियो से कभी प्ले नहीं हुआ है, तो मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूं वो गीत। लेकिन उससे पहले बहुत से काम और भी करने हैं। कुछ सूचनाएं हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। महीपाल जी की आज डेथ एनिवर्सरी है, तो आज हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। उनकी फिल्मों के कुछ एक गाने प्रोग्राम में शामिल रहेंगे और उम्मीद करती हूं कि आप इसी तरह से बड़े प्यार से मेरा साथ देंगे टिल 4 o'clock। 4 बजे के बाद सैंडी शाह आ रहे हैं ड्राइव टाइम शो लेकर, उनका भी साथ देंगे। तो तैयार रहिएगा सब कुछ सुनने के लिए। लेकिन आइए पहले जरा ये जान लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं कहीं भी इन इंडिया, तो फिर आपके का काम बहुत आसान है। यू कैन गो टू द ब्रांच, यू कैन गो ऑनलाइन और बाय यू नो, अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है योनो SBI UK का मोबाइल ऐप, तो उसके जरिए घर बैठे ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज आपको रेट दे रहे हैं ये 127 rupees and 75 paisas अगेंस्ट 1 British sterling pound.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Radio.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी। मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 lbs सिर्फ 24.99.
2: हमजा समोसास 3 for 10.
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p.
2: सुहाना मसालास 2 for 150. रामदेव नमकीन 2 for 149.
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179. हाइंस केचप 279.
2: केसर मैंगो पल 149. फूल मखाना 245. फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE5 4UN.
2: While stocks last.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just 711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
7: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
6: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
7: Also explore 2026 cruises.
6: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
8: Z105. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
11: Mantra Holidays. What's your Travel Mantra.
12: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
13: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
12: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
13: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
14: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio, August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
15: LemFi means quicker and safe way to send money.
16: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
15: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
16: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
17: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
18: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं महेंद्र कपूर साहब. महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में मैंने फिल्म गुमराह का गीत प्ले करने की सोची है और आपने मुझे लिखकर भेजा है और आप हैं देशराज जी, कहते हैं कि चलो एक बार, तो आई एम रियली सॉरी, ये गाना कल ही हमारे यहाँ से प्ले हुआ इसलिए मैं आज नहीं प्ले कर पाऊँगी. लेकिन जो गीत मैंने गुमराह का चुना है इसे भी आप ज़रूर पसंद करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है. आई सुनते

0: रवि जी का संगीत, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़, फिल्म गुमराह से चुना था मैंने इस गीत को। यहीं मैं अपने, मुझे कमल जी आपने एक मैसेज भेजा है कि अगर मैं अपने सभी सुनने वालों को भी बता दूं तो ठीक है, बिकॉज इट्स अ फ्री इवेंट हो रहा है, इंडियाज मच लव्ड बुटीक लिट फेस्ट। खुशवंत सिंह जी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा है, अ ट्रिब्यूट टू द एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ अ लिटरेरी ल्यूमिनरी एंड रिटर्न्स टू लंडन एंड ऑक्सफोर्ड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अराइव्स इन सटन एज वेल। सो ये एन इनविटेशन टू सभी को, जो भी आना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, स्टोरी रिकनेक्ट होगी अस विद द नेचर हेरिटेज एंड ईच अदर। And through literature, let's revisit ecological wisdom and imagine a more harmonious future as well. So, ये program हो रहा है, book the date अभी कर लें, London में Saturday 30th May को, Oxford में ये होगा June the 2nd and Sutton Saturday को June the 6th को ये program होने वाला है, खुशवंत सिंह लिट फेस्ट और ये फेस्टिवल है और डेट्स मैंने बता दिए हैं, देर इज़ नो फी सो दो देर इज़ नो टिकट्स सो कोई भी कहीं भी जा सकता है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल लंदन 2026 एडिशन है ये। सो मुझे उम्मीद है कि आप सबने क्लियरली समझ लिया है इस मैसेज को। ओके, और अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे आर्टिस्ट जिन्हें हम ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं, पहले इनका एक गीत सुनते हैं इनकी फिल्म से और फिर मैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ali Baba aur 40 Chor, is film se chuna gaya geet maine program mein shamil kiya. Is film ke hero the Mahipal ji, jinki aaj punyatithi hai. Unki death anniversary par unhe yaad kare. Mahipal was an iconic actor in mythological and fantasy films and known for his films like Narsimha Avatar in 1949, Aladdin aur Judai Chirag and Jadui Chirag 1952 mein. Ali Baba aur 40 Chor, जिसका गीत आपने सुना, माया बाजार इन 1958, नवरंग इन 1959 एंड संपूर्ण रामायण इन 61, जबक इन 61, पारस मनी इन 1963, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काम किया. एंड महिपाल चंद्र भंडारी उनका पूरा नाम था, बेटर नोन एज हिज फर्स्ट नेम. महिपाल वॉज बॉर्न इन जोधपुर राजस्थान ऑन डिसम्बर द 24th इन 1919 a rich Oswald Jain परिवार, business परिवार में. And his mother passed away when he was only 6 years old and he was raised by his grandparents and his father's business was based in Kolkata. So फिर वो फिल्मों में फिल्में देखते थे, उन्हें इन शौक था बहुत ज़्यादा, poetry का भी शौक था, school के dramas में भी हिस्सा लेते थे. And then वो उन्हें खींच लाया एक्टिंग की तरफ और एक्टिंग में फिर आगे चलकर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया. एंड डेब्यू जो किया था इन्होंने 1942 की फिल्म नजराना से किया था. पर मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी भूली बिसरी याद, सोचना नहीं आपने कि आप विंटेज गोल्ड प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इस वक्त बाली ब्रह्मा जी का ये शो और सरिता प्ले करने जा रही है एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म नवरंग से. उम्मीद करती हूँ आप पसंद करेंगे. और ये गीत आप तक कौन पहुँचा रहे हैं?
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Disha Basmati Rice, available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
2: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
4: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
5: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
6: खुद से भी ज्यादा।
4: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
6: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
4: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड अप टीवी, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स।
5: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
6: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

मुझे मालूम है कि आपके भी दिलो दिमाग पर इन गीतों का नशा छा रहा है, लेकिन क्या करूं, अब मेरे जाने का वक्त है और सैंडी इज ऑलरेडी इन द स्टूडियो और सैंडी बिल्कुल तैयार है, एक ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर रहेंगे। एंड वो ये और वो पता नहीं आज क्या करने वाले हैं इस और वो में कि क्या क्या सुनाएंगे आपको, पर उनका साथ दीजिएगा। माइक्रोफोन की इस तरफ से मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले यही कहूँगी, हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते चहकते महकते और थी रखते रहें। हम हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं और यही आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा हमारा साथ देते रहेंगे। तो मेरी मुलाकात आपसे कल होगी, यस, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए लवली वीकेंड एंड साथ दीजिएगा सैंडी का।

0: बंगले के पीछे कांटे लगे ना लगे। देखो आपके सामने मैंने अश्विनी जी को ऑन एयर वार्निंग दे दी थी, बच के रहियो प्रैंक्स शुरू हो जाएंगे। और आज मैंने जो उसको ना, वो आराम से बैठी थी सैंडी के साथ, हैंडओवर की तैयारी कर रही थी, और मैंने जो उसको डराया है, बाप रे, उसके शक्ल पे मैंने 12 बजा दिया और 12 साल चढ़ा भी दिया। बट अश्विनी, लव यू, गेट रेडी फॉर मोर।
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: And the gold trades at £109.75 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio. Friday Fire. With Radio Wally's Roller Coaster, only on Leica Radio.

0: Fry Yay Firecracker. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
1: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
2: No more worries for me or
3: Southall Travel, at all protected.
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam, live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक
7: बस कुछ ही दिन और रहो फिर हमारा भी मंडप सजेगा
6: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर
7: आर्यभट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है
8: मैं ही राजीव भाटिया
6: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707 स्काई ग्लास 714 वर्जिन मीडिया 809 BT 394 एंड Z5 ऐप
9: लेस्टर The biggest celebration of the year is here.
10: 50 Fest at Root Millers, powered by Kalyan Jewelers,
9: Kavya Silks,
10: Rafiq Catering,
9: and Jungle Club,
10: Glozo,
9: Mars, Dreams,
10: and Neslo Estate Agents.
9: Join the fun with games, dancing, and live anchoring, and walk away with amazing prizes. Spend £50 for 1 kg of ghee, or £200 for 15 snacks of sugar.
10: Plus 2,000 more Root Packs hidden vouchers. All our customers are winners. With £50,000 in prizes to be won, this is one event you can't miss. Root Millers on Melton Road, Leicester. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
11: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप
12: टेबल पे सिर्फ एक हीरो जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स
11: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर ऑल इन जयमिन पोटैटो चिप्स
12: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स देसी स्वैग इन एवरी बैग
0: Leica Radio Network प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
3: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: Rice. Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash and Carry, Syston Street, Leicester, and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
2: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
3: दिल तो टूट भी गया।
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
5: दिस सुपर हिट सॉन्ग इज प्राउडली sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Basmati Rice. Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
1: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
5: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
6: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
5: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
1: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win. कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन, जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
7: सीटीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
8: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
9: खुद से भी ज्यादा।
7: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
9: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
7: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे सीटीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
10: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
1: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, ET392, NDR TV, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नाफको फूड्स।
5: Liker Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire, with the UK.
6: Liker Radio.
5: Pay close attention and name the film of this cracker classic.

0: नजर की बात की और दिल चुरा गए।
1: अगर हम रोमांस की बातें कर रहे हैं तो किसी के बाप का क्या जाता है?